फल है जित सतगुर का मन मने। ओ सेवा कीती हुई परवान है जेड़ी सेवा ते सतगुरु प्रसन्न हो जाए।

तू ते तेरी घरवाली ने सारी रात बड़ी सेवा कीती। असी धन गुरु अर्जन साहब नू जाके दसांगे, पर भोलिया नू की पता किस गुरु नू दसना है। ओ गुरु ता आप पखा चलदा रहा, आप पैर घुटदा रहा। हुण जथेदार धन गुरु अर्जन साहब नू कहंदा है, ऐ भाई सिखा, जिथे इन्नी सेवा कीती है उथे होर सेवा कर थोड़ी जी। सानू दरबार साहब लै चल, असी पहली बारी आए हैं। धन गुरु अर्जन साहब उसे तरह सिर ते कपड़ा लपेटे है के रस्ते विच कोई पहचानी ना, अगे अगे आप तुर पए ते पिछे पिछे

दर्शनी ड्योड़ी कोल पहुंची वड्डे दरवाजे कोल संगत दा जथेदार तन गुरु अर्जन साहब नू कहन लगा ऐ सिखा तू बड़ी सेवा की थी हुण सानू ए दस असी अपने जोड़े अपनियां जुतियां किथे ला के रखिए तन है तन गुरु अर्जन साहब कहन लगे साध संगत तुसी अपने जोड़े अपनियां जुतियां इथे ला दियो मैं इन्हां दी रखवाली करना तुसी दर्शन करियो सारी संगत ने अपने जोड़े ला दिते सारी संगत दरबार साहब दे अंदर वल तुर पई पिछों उस अरशां दे मालक धन गुरु अर्जन साहब ने काली नाल सारे जोड़े कठे कीते उन्हां जोड़ियां दे विचकार आप चौंकड़ा मार के बैठ गए जेब च रुमाल कढ़िया एक हथ विच संगत दा जोड़ा फड़िया रुमाल दे नाल जोड़ा पूंझिया उस रुमाल नू अपने मुंह ते फेर लिया फिर जोड़ा चुकिया फिर रुमाल नाल पूंझिया फिर रुमाल नू अपने चेहरे ते फेर लिया संगत दियां जुतियां संगत दे जोड़े रुमाल नाल पूंझदे ने ते रुमाल नू अपने मुंह ते फेरी जांदे ने ते नाले मुस्कराई जांदे ने ते मुंह तू कहंदे ने गुरसिखां की हर धूड दे हम पापी की गत पाए ऐ सतगुरु गुरसिखां दे चरणां दी धूड़ी दे ताकि मेरे वर्गे

राती संगत आई धन गुरु अर्जन साहब रात दे किशोर दी संगत नूं दर्शन देण गए ते सारे हैरान हो के कहन लगे बाबा जी किशोर तों ते असीं आए। अगू बाबा बुढ़ा जी हैरान हो के कहन लगे तुसी किशोर तों आए हो तुहानूं गुरु साहिब मिले नहीं? कहन लगे नहीं बाबा जी सानूं नहीं मिले। तां बाबा बुढ़ा जी कहन लगे ए किवें हो सकदा है, सानूं हुणे पता लगा है कि धन गुरु अर्जन साहब आप माता गंगा जी दे नाल लंगर लै के रात दे पिशौर दी संगत कोल गए। जदों इह सुणिया लंगर लै के गए ने नाल माता गंगा जी दे ते सारियां दे मन नूं इक धक्का जिहा लगा, हथ जुड़ गए, अखां भर आईआं, अखां ने ते रोणा सी

के गए। बाबा जी बड़ी भुल हो गई, ओ गुरु उन्हें लंगर छकाया, वो सारी रात सानू पखा चलते रहे, साढ़े पैर कुटते रहे। बाबा जी ये देना कितने देंगे? तब बाबा बुढ़ा जी घबरा के कहन लगे, हुण गुरु अर्जुन साहब कितने ने? ते सारे ने रोंदे आखिया, बाबा जी उस गुरु नू हुण अपने जोड़ियां दी रखवाली बिठा के आए। बाबा बुढ़ा जी बाहर नू भज पए, पिछे पिछे संगत नजारा थकिया, चार चपेरे संगत दे जोड़े, एक हाथ विच रुमाल एक हाथ विच जोड़ा। जदों फिर रुमाल दे नाल जोड़ा पूंजिया, रुमाल मुंह ते फेरिया, जदों दोबारा जोड़ा चुकिया ते बाबा बुढ़ा जी ने जोड़ा खोलिया। पातशाह गुरु होके ते की कर दे, संगत भी वैराग च आ गई। ते तन गुरु अर्जन साहब ने कहा, भाई किसी ने रोना नहीं, पछतावा नहीं करना, तुसी गुरु नानक दे घर आए हो, जेड़ा भी तुहाडे जोड़े चाड़ेगा वो जो मंगेगा ओनू मिलेगा, जेड़ा भी संगत दे जोड़े चाड़ेगा ओदा जन्म मरण सौर जावेगा। ऐसा गुरु जेड़ा कहिंदा नहीं सेवा करो, बल्कि आप भी सेवा करदा है ते उपदेश करदा है ऐसी सेवा करो कि जिदे नाल

अचानक सच्ची पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, सानू सुमति बख्श रहे हैं। ऐ मनुख जेड़ी गल चेते रखन वाली सी उनू तू भुला दिता, तैन चार कम तो चेते रह गए, खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरण, तेनू विसर गया। जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तेनू अमोलक श्वासा दी पूंजी, हीरे लाला तो महंगे तेरे श्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है। उना स्वासां दे लाला नाल कितने कु तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन, उथे ता लेखा पुछा जाना। इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह, कहंदे हो विसर गया है मरना, चेता कर मालक ने सदना तैनू।

नाम रूपी अमृत पीते ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नूं ही कलंकित करके जाएगा किसे माड़े पुरुष नूं संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या इसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेनू कोई कोल ना बैठन देवेगा उचारण करो श्री वाहिगुरु इसलिए गुरमुख त्यावें से अमृत पावें से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया से

सिवरन जो करे दुख काहे को होए। दुख क्यों आ जाएगा? ये पहला दीवा जग रहा है हरेरा, क्यों आ जाएगा? बाबा जी बचन कर दे सन, जे दुखा दा कोई ऐसा चमत्कार आ भी गया है तो मालिक की मेहर का सदका सोली भी सूल बन जाए, सोली भी सूल बन जाए। तो मरदानी ने दुख वेले फिर गुरु नानक देव से आया, हो मेरे सतगुरु सचे पातशाह मेरे उत्ते कृपा करो, मैनू छुड़ाओ। अगर मत्ती बैठे सन नेत्र खोले पालिया, जी सचे पातशाह मरदाना याद पे करता है, सचे पातशाह किथे है? हजूर मुस्कुरा पे कह लगे बालिया गल च फांसी का रस्ता पे हो, आखो श्री वाहे। भाई बाले ने क्या मारा मरण दो मरदाने, आखो श्री वाहे। कदे कहना रोटी चाहिए, कदे कहना पानी चाहिए, एवं दुखी देता रहता। पर दयालु गुरु जी मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी हो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान ने अवगुण को लाया। ए पूरे गुरु की वड्याई है। हजूर कह लगे हो वाले मर जाने नु मरदाना बनाया है, चलो जी रखिया कर। हजूर आए मरदानी की गल च जिसने फांसी का रस्ता कढ़िया, बादशाह ने कीते दर्शन, ए कौन आ गए हैं? दर्शन कर दिया बादशाह जरा सी, एदा मन मोहन हो गया। तुसी कौन हो? मरदानी ने कहा कौन की पुछदा है, आप निरंकार गुरु नानक है। ज्यो ज्यो गुरु नानक का नाम लिया बादशाह मन में शांति आ गई। हजूर कहने लगे तिरछी निगाह नाल तकिया, हो राजन हो बादशाह बेदोषिया नु मारना पाप है, आखो सी एदा बदला देना पवे। सच का न्याय कर, तप करके तेनू राज मिलिया है, राज त्रह के पाप करता है, याद रख अनकाए रातड़िया वाट बहेली राम, पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना मिली। गुरु का उपदेश सुन के बादशाह चरणा ते बह पिया, हजूर ने सीधे रस्ते पाया, बादशाह सिख बन गया। हजूर कहने लगे स्वास स्वास जपिया कर श्रीवास, बाणी पढ़िया कर, सच का न्याय करिया कर, बादशाह सिख हो गया, सारा राज सिख हो गया। हजूर तुरन लगे लै मरदाने असी तो चलते हूं, तू इतें रहो महाराज मैं थोड़े नालों भी अगे आखो श्री वाह। क्या मरदाने? बस महाराज पता लो नाल तुर के अज फिर मरदाना भुल गया, आखो श्री वाह। इंसान भुलन हार है प्यारे, याद रखना वो इंसान ही नहीं है जरा भुलता नहीं, पर भुलता तो जरूर है, पर सियाणा वो है जरा भुल मन लवे, आखो श्री वाह। सियाणा वो है जरा भुल मन लवे, ये पुल मन के गुरु के चरणा से ढह पवे फिर गुरु नहीं बख्शेगा, जरूर बख्शेगा। नाने गरीब तह पिया द्वारे हर मेल लियो, ये भी बढ़िया नहीं। बच्चा कितनी गलतियां क्यों ना कर ले, पर ये बापू के चरणा से ढह पवे, बापू मेरी पिछड़िया पिला माफ, अगर मैं गलती नहीं करांगा। कोई है ऐसा बापू जरा माफ ना कर देंगा? जरूर कर देंगे, पर बच्चे भी चाहिए है अगे वास्ते गलतियां।

जिन पहुंच दहली तजियो शरीरा जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्याग गया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह के कौतुक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागे है। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज के जीवन बारे

अति छोटे गुरु हरकृष्ण साहब, सिख संगता जिथे गुरु हर राय साहब जी के दर्शन करना आदी है, उथे गुरु परिवार के भी दर्शन कर दी। सिख धर्म दे विच गुरु नानक साहब ने जो सिख धर्म की नींह रखी, छूत छात ऊंच नीच जात पात उपर उठ के एक निर्मल पंथ चलाया। इस पंथ विच जात पात ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं, और जिहड़ा जात पात सिख मनदा है, सिख बेशक वह खवांदा है पर गुरु दे उपदेश तो वह दूर है, क्योंकि गुरु साहिबां ने कहा है कि परमेश्वर ने जातां पातां ऊंच नीच नहीं बनाई, इस सब कुछ इंसान का बनाया होया है। इस करके जिहड़ा मैनू प्यार करदा है वह जातां पातां ऊंच नीच नहीं मनदा। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक ये दस गुरु साहबान गुरुगद्दी ते बैठे, पर गुरुगद्दी ते ओ ही गुरु बैठे है जिसने सेवा सिमरन कीता और हुक्म मन्या। ए तुरदी दात ओदे हिस्से आई जिसनों तुरों लिखी।

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालों नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरु गद्दी अपने

0: रत्नवा बारू पीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ लच दिगरिया ना हनी अजनु समझ

इसके दिन प्यार जब इश्क निमाज चा नीति या की मंदिर ते की मसीदी ते फिर चीजें दी कोई कमी से हकीकत तो प्यार है ते प्यार नहीं तो मंदिर ची कटी हुई जान दा कोई ना मस्जिदी जुई मत्थे टेकने दा कोई हकीकत प्यार तो भुले शाह लिखता है जब इश्क निमाज से नीति क्या मंदिर ते क्या मसीती फिर जब यार ने आन दीदार दिता यार को वाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन यार हमारे सच यार कहते प्यारे तेरे नाल बहुत प्यार कि पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जुन देव पातशाह अकाल पुरख नु यार कहते लिखता है जब यार ने आन दीदार दिता इश्क का सिजदा किया यार सामने आके खड़ो गए फिर होया कि बुले ने कमाल किया कहता है जब यार ने आन दीदार दिता गल दसनी नहीं जड़ी बीती वो दसन वाली चीज ये कुछ दसदा फिरदा है तो गलत बाबा जी बचन करते कई ऐसे लोग मैं तुम्हें तो रब मिला देना मैं रब हां नरम खार बाबा जी बचन करते सब झूठ को जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं हाँ खुश मैं तो बिछोड़ा है क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं निरंकार मेरा दे मैं निरंकार अदूर कहते सो अजान कहे मैं जाना

सत्संग रूपी मान सरोवर आप जी ने धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त आज पूर्णवासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहे सोचेंगे गंगाराम ने भूल की थी और गंगाराम ने तकमेरी की थी इसी रोज कर जाते रोज दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु और संकोच कर नहीं माया तो वही साड़ी है जी चंगे पासे गुरु साई तुलसीदास जी ने लिखे माया है दो भात की दो चलावे रहा एक ले जावे नरक को एक शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बुआ खुल जाए गुरु के लिखे ला दो और नरक न जोड़ दो जिथे तन मन न आके जुड़े अपने तनों में पवित्र दर्शन ते शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है बाबा जी बचन कर रहे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसी नू की दे सकता ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरद है मानो शब्द वाला ही इश्क दे हिरदे ते बह के आप प्रेरद है आप शब्द का आदर कराउंदा है ते बाबा जी कहने लगे फिर बख्शिशी गुरु आप ही कर तो आप जी ये समा एक दिन भी दो दिन भी कुछ दिन को आप निपने गुस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते जिस प्रोग्राम को कदे बना रहे सन बरपुरदार सरदार गुरचरण सिंह जी दीवा हरबंश सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे के प्रबंधक आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बने अजीक नायक प्रोग्राम साहब दास पहुंच गए मार्ग के दर से हाजरियां भर रहे हैं बाकी दो ही दिन विच रहेंगे कल तक प्रश्न है सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाप से कितने साल हम 50 साल हो गए हैं कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस ग्राउंड के दर्शन हुए गुरुखा के दर्शन आगे पीछे हमारे संस्थान जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है और प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसी तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश करो आप जी दे दरो करो वरसाए हुए गुरु सिख माई पाई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन पौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दमाइया च बरकता पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला कर सको।